हे मेरे मालिक, सब तेरे कोलो मंग रहे हैं। ते मंगिया उथो ही जांदा है जिथो दात मिलती हो, जिथो मंग पूरी हो जाए। इसलिए सब तेरे कोलो मंग रहे हैं। पर गल कमाल दी है, मंगल वाले बहुतात विच हन जिन्हां दी कोई गिनती नहीं, पर देन वाला इको ही। ते हर मंगते दी मंग वखरी है, ए नहीं कोई कोई मंगदा होवे। जिन्ने मंगण वाले ओनिया ही उन्हां दीयां मंगां। पर हे परमात्मा, तू देन वाला एक है, कुर्बान हां तेथों जो तू सब दीयां मंगां कबूल कर रहे है। हुण गल मंगण दी चली है, ते साहब कहिंदे ने आ हुण विचार इस गल दी भी कर ली है, परमात्मा देन तो इनकार ते नहीं करदा, पर असी मंगना किवें है ते मंगना की है।

ऐसा नहीं कि मंगना माड़ा, हां मंगना चाहिए, पर मंगना किवें है ते मंगना की। हुण साहब गिनती पहले उन्हां दी दस देने कि जो मंग रहे ने, कोई मान मंग रहे, मान दा भाव है इज्जत रिस्पैक्ट, तान मांगो, तान दा भाव है जोर विल पावर ताकत, धन लक्ष्मी सुत दे, कोई धन मंग रहे, मनी माया मंग रहे, सुत कहिंदे ने कोई पुत्र मंग रहे, लक्ष्मी कहिंदे ने कोई इस्त्री मंग रहे। हे परमात्मा, जिन्ने मंगते उन्नियां उन्हां दियां मंगां,

मंगी है। केसो केसो कुकिए ना सोइए आसार रात दिवस के कुकने कबू को सुने पुकार, कभी ते पुकार सुनेगा ना, बस मंगता मंगी जाए, मंग बार बार दोहराई जाए, किवें मंगे बबीहे दी तरह। उस चातक दी नहीं आई जिड़ा बार बार प्यू प्यू करदा रहिंदा, मंगी जांदा है ना, दिन विंदा ना रात विंदा, वो पुकारा करी जांदा है। बबीहा बोल रहा सी, किसी ने आवाज मारी ते आखिया बबीहा क्यों प्या बोलना, कहना एक बूंद चाहिए, एक बूंद ली बोल रही, मंगती का पहला गुण है जी। कहने संसार विच कितना बड़ा समुद्र है, नदियां नाले ने, सागर हन, तालाब हन, वो कितों भी एक घुट पानी का पी के अपनी प्यास बुझा ले। कहने नहीं, ये पानी मेरी प्यास नहीं बुझा सकते, मैनू तां एक बूंद चाहिए, एक बूंद वास्ते मैं इतना प्यू प्यू कर रही हूं। ख्याल करियो जी, एक बूंद जल कारण चातक दुख पावे, एक बूंद वास्ते वो किन्ना बोल ले। कहना जा जाके सो, आप भी सौ ते मैनू भी सौन दे, क्यों नींद हराम कर रहे। बबीहा नहीं मुड़िया जी, बबीहा बोलता जा रहे। आखिर की होया, वो एक लिव नाल बोल रहा सी, एक कोलो मंग रहा सी। बाणी विच फैसला है जी,

अंतर ज्योत राम परगासा गुरमुख बिरले जाने भगत कबीर साहब का उचारिया होया ये शब्द श्री गुरु ग्रंथ साहब जी।

कोई कहे, अगर कोई झूठी कहानी सुनावे लोग उसनु भी सुनते हैं, पर ए ते परमेश्वर दे नाम दी कहानी सच्ची कहानी। और भगत कबीर साहब कह रहे हैं, अंतर जोत

तीन बंदा विच इस तरह वंडदे हन। हे भाई, जे कोई मनुख अपने आप नूं गुरु दे हवाले करदा है, ओ प्रकाश रूप परमात्मा दे मेल दी अवस्था नूं समझ लैंदा है। उस दे अंदर जोत जग पैंदी है, उस दे अंदर राम दा प्रकाश हो जांदा है। पर इस अवस्था नाल जान पछाण करन वाला हुंदा कोई विरला ही है। गुरु दे सन्मुख होए अजिहे मनुख नूं इह समझ आ जांदी है कि संसार एक रुख समान है।

अमृत दी एक बगीची है जो उस पूर्ण परमात्मा ने बनाई है। जिमें एक पौरा फुल दे रस विच मस्त होके फुल दियां खिड़ियां पत्तियां विच अपने आप नु जा बनाउंदा है, जिमें कोई पंछी अपने खंभा नाल हवा नु उलारा दे के आकाश विच उड़दा है, तिवें ओ गुरमुख नाम रस विच मस्त होके पूर्ण खड़ाओ नु अपने हिरदे विच टिकांदा है ते सोच मंजल विच हुलारा दे के प्रभु चरणा विच उड़ारी लांदा है। उस गुरमुख

मंदल बाजे, मंदल क्या है टोल नू। एक टोल बजता है जदो मड़िया हुंदा है, जदो बदल गरजदे ने सावण दे महीने बरसात पैंदी। पर जद परमेश्वर दा मेल होवे, गुरु मेल करावे, ते फिर अनमड़िया मंदल बाजे, बिना मड़िया होया टोल वजन लग पैंदा है। बिन सावण कानहर गाजे, बिना सावण दे बदल गजन लग पैंदा है। बादल बिन बरखा हुई, बिना बदल दे बरसात होण लग पैंदी है। बादल बिन बरखा हुई जो तत बिचारे कोई, ए गल हसण वाली ने विचार दी है। जद परमेश्वर दा नाम अंदर वस जावेगा, परमेश्वर दे नाम दा टोल वजेगा, ते फिर जिहड़े विकार ने ए अंदरों भज जाणगे। टोल वजे ता छोटे मोटे खड़ाक सुनाई नहीं देंदे, परमेश्वर दे नाम दा टोल अंदर वजेगा ते विकार दुबदा ईरखा ए भज जाएगा। बिन सावण का

मैं सिमरन करके ये गल जान ली है कि सिमरन करन दे नाल जिथे दुखां दा नाश हुंदा है उथे जग जीवन सिंह जीव समाना जीवन देन वाला जेड़ा परमात्मा है ओ दे नाल जीव दा मिलाप हो जांदा है और ओ इंसान इस कहानी नूं जान लैंदा है सिमरन सदका कि सारे विच परमेश्वर दा नूर है ओ दी जो

जितना समा परमेश्वर दे नाम दा कीर्तन सुनोगे उतना समा तुहानू अपने दुख कलेश भुल जाने ते जदों उस रंग विच उठोगे दुख कलेश फिर घेर लैणगे। इसे वास्ते ते गुरु महाराज भगत गुरमुख उपदेश करदे हन कि हर वेले परमेश्वर वल ध्यान रखो। जिवें कीर्तन सुनदे आ दुख भुल जांदे ने, हर वेले उहदा नाम चेते रखोगे ते दुख कलेश

क्योंकि वाणी गुरु देंदा है। इसे करके सतगुरा ने इंसान नु कहा किसे बेतारी दे पिछे ना लगो, बाणी नाल जुड़ो, क्योंकि बाणी परमेश्वर दी है। जो परमेश्वर कहंदे गुरु ओहो ही उपदेश करदा है। ते गुरु कहंदे तुसी मेनू परमेश्वर ना कहो, मैं भी परमेश्वर दा भेजिया आया, मैं ते परमेश्वर दा सुनेहा तुहानू देना है, ते तुसी भी परमेश्वर नाल जुड़ो। ए बाणी मेरी नहीं, ए परमेश्वर दी बाणी। जैसी में आवे खसम की बाणी, तैसड़ा करी ज्ञान विला लो। जेड़ा इंसान, जेड़ा पीर पैगंबर अपने नाल जोड़े।

कितना चानना कितनी रोशनी होंदी है एक सूरज दे चढ़न ते। अगर हजार सूरज भी चढ़ पवे सौ चंद्रमा भी रोशनी देवे तावी मन दे विच हनेरा रहिंदा है अगर मन विच ज्ञान नहीं। कई बारी आपां देखदे हां एयर कंडीशन कमरे हुंदे ने पर अंदर बैठा इंसान सड़ रहा हुंदा है गुस्से दे नाल उहदे मन नूं चैन नहीं हुंदा। रोशनी विच इंसान बैठा होवे अंधेरे विच हुंदा है अंधेरा केड़ा अज्ञान दा। अज्ञान की है? अज्ञान यह है कि दूसरे का हक मैं खावा अपने सुख वास्ते दूसरे का हक खाना दूसरे नु दुख देना यह है अज्ञान। ते ज्ञान की है? ज्ञान यह है कि भाई सारे विच परमेश्वर है सारे विच खुदा है वाहेगुरु है जे सारे विच वो है फिर ते मैं सारे नाल प्यार करांगा। इन्हां गल्लां

पानी टिक्या रहेगा, जे पानी नो धरती से डोलो पानी खिलर जाएगा। इसे तरह सहिब जी फरमांदे हन, कुंभे बद्दा जल रहे जल बिन कुंभ ना होए, ज्ञान का बद्दा मन रहे। जिवें पानी घड़े विच टिक जांदा है, इसे तरह मन गुरु दे ज्ञान दे नाल टिक जांदा है, और ज्ञान

सतगुर की बाणी सत स्वरूप है, गुरबाणी बनी है। सतगुर की रीस होर कच्चू पिच्चू बोल दे से कुड़िया।

सिर्फ मिठियां ही स्वीट चीजा ही नहीं, और बहुत सारी चीजा जो प्यारियां लगदियां स्वादलियां लगदियां, कहिंदे मिठियां समझ के उन्होंने खाया पर कौड़ा उपजा साग, पर उन्हों का रिजल्ट जो है अखीर दे जाके वो स्वाद कौड़ा निकले, उस दे विच कुड़त्तन निकली, शरीर ने ही वह बीजिया पर शरीर में ही वह भोगना पै गया, भोगंग त रोगंग, शरीर ने ही भोगां की मौज माणी पर शरीर नूं हुण रोग भी सहने पैने हैं, भोगंग त रोगंग, जितने ज्यादा भोग उतने ज्यादा रोग, जितने ज्यादा डिशिज उतने ज्यादा डिजीज। गुरु बाबा जी कहते हैं ये तन मेरा कुछ सफला करता है, वरना इस तन दे नाल मैं रोग अते दुख अते पेन ही ग्रो करता हां, वो खुद मैनू खानी पैंदी है, उदो बड़ी तकलीफ हुंदी है। महाराज जी एक जगह होर बाणी चाकदे हन, कहते हैं जे सौ वरिया मिठा खाए, कहते हैं

जितने भी शरीर दे रस हन उतने ही दुख लगते। इस करके महाराज जी ने एक पंक्ति दे विच ग्रिस्तियां नू खास करके ग्रिस्तियां इस समझाया है कि जे तुसी ग्रिस्ती हो तो इसका अर्थ ए नहीं कि तुहानू अकाल पुरख वाहिगुरु ने जां सतगुरु ने एग्जेम्पशन दे दिती है कि हुण तुसी जो मर्जी खाओ पियो भोगो रस माणो। नो, तुहानू भी योगियां ऋषियां मुनियां वाली ही साधना तपस्या करनी है भावें तुसी ग्रिस्ती हो, क्योंकि असं कई दफा सोच लेने ना कि असं तो हम ग्रिस्ती लोग हाँ, असं कोई साधु संत थोड़ो अते अपने आप नूं आप ही एक्सक्यूज कर लेने हैं कि साड़ी सोशल लाइफ भी है असं ग्रिस्ती हाँ। हुण गुरु साहब ग्रिस्ती किस नूं कहिंदे हन ये नहीं असं सुनिया, ये नहीं असं सुने, असं सिर्फ इन्ना ही सुनिया कि गुरु बाबा नानक देव जी महाराज ने ग्रिस्त धर्म नूं बहुत उच्चा आख्या, ऐ सुनिया, ठीक है ना। गुरु नानक साहब महाराज ने ग्रिस्त धर्म नूं प्रवान किया, पर किस किस्म दे ग्रिस्त धर्म नूं प्रवान किया ये दसना भी मुश्किल है, इस नूं मनना भी बड़ा मुश्किल है, तो सानू शायद किसी ने दसिया भी ना होगा। गुरु बाबा जी दसते हैं कि ए ग्रिस्ती जे तू सोचे कि ग्रिस्ती होने के नाल तेनू एग्जेम्पशन मिल गई है कि तू हुण बॉडी दे लैवल दे उत्ते रह के सारे बॉडी दे रस जो टेस सन उन्हां नूं माणी जा, तेनू कोई तपस्या करन दी कंट्रोल करन दी अपने उत्ते कोई मास्टरी करन दी लोड़ नहीं है, क्योंकि चूं तू ग्रिस्ती है इस करके यू आर अलाउड, वो कहिंदे ऐसी गल नहीं। हुण पंक्ति सुनने वाली है बहुत प्यारी,

0: है गृहस्थी। इसके अर्थ सुनो,
1: सो गृही जो निग्रह करे,
0: कहते गृहस्थी वो है जो निग्रह करे। निग्रह का मतलब, निग्रह का मतलब है कि अपनिया इन्हें सेंसुअल प्लेजर्स के उत्ते अपनी मास्टरी अचीव करे, इन्हों का मास्टर बने, इन्हों उत्ते काबू पाए, इन्हों उत्ते कंट्रोल करन दा अभ्यास करे। बेशक आहिस्ता आहिस्ता करे, आहिस्ता आहिस्ता करे, पर एक दिन ऐसा उसके जीवन दे विच आए कि ओ इन्हां इंद्रियां दे रसां दा गुलाम न रहे। क्योंकि जो इंद्रियां दे रसां दा ही गुलाम रह गया, वह शरीर दे ही तल ते रह गया, ओ शरीर तो बॉडी तो अगा इवॉल्व नहीं होया। जो बॉडी तो अगा इवॉल्व नहीं होया, उसनू द्वारा फिर बॉडी दे विच पाया जाएगा, वो फिर जन्म मरण दे विचों गेट चो मुक्त नहीं होया, द्वारा उसे ही गेट दे विचों फिर आ जाएगा। और ये भी पता नहीं किस किस्म की बॉडी च पाया जाएगा, ये भी कोई पता नहीं ना। जो शरीर दे लेवल ते अपनी लाइफ नू एंड करता है, दैट विल कम बैक इन टू द फॉर्म। तो महाराज जी आखते हैं, सो गृही ओ गृहस्थी है, जेड़ा गृहस्थी हुंदियां होयां, गृहस्थी विच रहिंदियां होयां की प्रैक्टिस करे, अपनियां इन्हां इंद्रियां दे तमाम रसां नू मास्टर कर लै, कंट्रोल च कर लै, काबू च कर लै, ते इन्हां नू जित लै। सो गृही जो निग्रह करे। अगली गल, जप और तप। जप इज मेडिटेशन, नाम सिमरन। तप है अपने जीवन दियां, अपने बिहेवियर दियां तमाम जो जो लो नेचर दे जो साडे सुभाव हन, जितनी भी साडी लोअर नेचर है, पशुआं वाले सुभाव हन, अपने आचरण नू, अपने बिहेवियर नू, अपने लाइफस्टाइल नू तब्दील करन दी तपस्या करे, तपस्या करे। तो नंबर एक, इंद्रियां उत्ते इन्हां दे रसां कसां उत्ते काबू पाउण दा अभ्यास करे, ए तप करे। दूसरा, अपने आचरण अपने कर्मां नूं निर्मल बनाउण दे वास्ते तपस्या करे, जप तप संजम, अते अपनी जिंदगी च संजम लियावे। संजम दा मतलब, संजम दा मतलब कि ओ अपनी नीड्स नूं घटावे, अपनी नीड्स नूं अननेसेसरी ना बधाई जाए। पदार्थां नूं देख के मार्केट दे विच, बाजार दे विच जो कुछ भी एडवरटाइज किया जाता है, यह जरूरी नहीं है कि उसनू उसने खरीदना ही। बहुत वाइजली अपनिया नीड्स नू समझे, अते अपनिया नीड्स नू वध तो वध सादगी दे विच, सिंपलिसिटी दे विच रखने की कोशिश करे। यह है मतलब संजम दा, कि लाइफ नू बहुत होवे, बहुत ब्यूटीफुल एलिगेंट, पर बड़ी सिंपल होवे, बहुत सिंपल होवे, और ऐसी होवे कि जिसनू मेंटेन करन दे वास्ते उसनू दिन रात भटकना ना पवे। क्योंकि कई दफा सानू अपने एक्सपेंसेस पूरे करनो ही, अपने बिल्स पूरे करनो ही सारा दिन रात सानू भटकना पैंदा है, जस्ट टू पे अवर बिल्स। पर असी उतने क्रिएट ही क्यों करिए? कबीर साहब ने आख्या है, सादा जीवन जियो। गृहस्थी वो है जिस दे जीवन दे विच, कहिंदे जिहड़ा गृहस्थी जीवन दे विच बैठा होया इन्हां चीजां उत्ते कम करदा है, अपनियां इंद्रियां नूं कंट्रोल करदा है, इंद्रियां दे स्वादां दे उत्ते ओह फतेह पाउंदा है, अते अपने आचरण नूं ओह ओहदी तपस्या करदा है, अते अपनी जिंदगी च संजम लियांदा है। जप तप संजम भिख्या करे, इस गल दी ओह वाहिगुरु तों भिख्या मंगदा है। पुन दान का करे शरीर, कहिंदे ओहदा जिहड़ा शरीर है, कहिंदे ਉਹ ਪੁੰਨ ਦਾਨ ਦਾ ਇੱਕ ਮਾਡਲ ਬਣ ਜਾਏ, ਭਾਵ ਪਰ ਉਪਕਾਰ ਅਤੇ ਸੇਵਾ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਉਸਦੇ ਸਰੀਰ ਦਾ ਕੋਈ ਮਕਸਦ ਹੀ ਨਾ ਰਹਿ ਜਾਏ, ਸਰੀਰ ਤੋਂ ਇਹੀ ਕੰਮ ਲਵੋ। ਸੋ ਗਿਰਹੀ ਗੰਗਾ ਕਾ ਨੀਰ, ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਹੈ ਅਸਲ ਗ੍ਰਿਸਤੀ, ਅਤੇ ਗੰਗਾ ਦੇ ਨੀਰ ਤੋਂ ਵੀ, ਗੰਗਾ ਦੇ ਜਲ ਤੋਂ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਉਹ ਪਵਿੱਤਰ ਇਨਸਾਨ ਹੈ। ਇਹ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਸਾਨੂੰ ਸਾਧਨਾ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਦੱਸਦੇ ਹਨ। ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕੋਈ ਵੀ ਅਗਰ ਮੈਨੂੰ ਮੇਰੇ ਤਨ ਨੂੰ ਸਫਲਾ ਕਰਾ ਦੇ, ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਤਨ ਉਸਨੂੰ ਵੇਚਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਹਾਂ, ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਗਾਓ ਇਸਨੂੰ।

तो साड़ी विचार ये चल रहे थे कि असी महाराज जी की पवित्र बाणी दे विचों जो सानू तन मिलिया है इसकी सानू पूरी खबर नहीं है कि एक ही वस्तु है। इस दे नाल असी की करना है, इस दे विच की कुछ है, इसका सानू पूरा ज्ञान नहीं है। असी एक बेहोशी जिही दे विच अपना जीवन जो है वो गुजारी जानी। सो गुरु बाबा जी की बाणी दे विचों असां तन दे संबंध दे विच जो सानू ज्ञान विचार शब्दां दे राही मिलते हैं वो असी समझना। दो नुक्ते आप जी की सेवा च दास ने कल अर्ज किए सी। नंबर एक, ये दुर्लभ है, इस तो वध की कीमती शाय कोई होर नहीं। नंबर दो, ये रब का मंदिर है। आओ अज तीसरा नुक्ता आप जी के सामने रखिए। गुरु साहब आखते हैं ये रब की कामणी है, ये जरा शरीर है ये रब की पत्नी है, रब की कामणी है, उसने आप इसनु अपनी मर्जी दे नाल डिजाइन किया, आप उसनु उसने सुंदरताई बख्शी है, आप उसने इसनु सवारिया शंगारिया है। ये शरीर रब दी कामणी है, रब दी औरत है। तो अगर साढ़े पास ये है तो एक रब दी अमानत है, ये रब दी कामणी है। महाराज जी अपनी बाणी च आखते हैं

0: अत सवाले का मतलब अति खूबसूरत, हर काया बहुत खूबसूरत है, कोई ऐसा नहीं भी घट खूबसूरत है तो ज्यादा खूबसूरत, बदसूरत असी बना लेने वरना हर काया अपने आप यूनिक रब की कामनी कहते हैं
1: काया कामण
0: कामनी मैंने औरत
1: अत सुवालियो पिर वसे जिस नाले
0: अते पिर जिस दे नाल रहिंदा है वो अपनी औरत दे नाल रहिंदा है, इस तो दूर नहीं जांदा, इस दे रोम रोम दे विच समाया है, उसनू अपनी औरत दे नाल इतना प्यार है, अपनी कामनी नाल इतना प्यार है, तो इस दे अंदर रहिंदा है, इस दे संग साथ रहिंदा है,

के हे निरंकार साडे कलयुगी जीवां दा सुभा ही ऐसा है कि जेड़ा हर वेले साडी रख्या करदा है हर वेले साडे नाल है जिदे सदके असी ए संसार दे नजारे संसार दे खेल वेख रहे हां ओ सानू याद नहीं रहा असी भुल गए हां उसनु जेड़ियां वस्तुआं सानू तोड़दियां हन असले नालों परमेश्वर नालों उना वैरियां नाल असी प्यार पा लिया जिन्हां ने साडे नाल नहीं चलना उना नाल तां प्रीतां पा लईयां जिहड़ा हर वेले नाल है उनूं विसार छड्डिया संग सहाई सो आवै न चीत जो बैराई तां सो प्रीत बलुआ के ग्रह भीतर वसै ए रेत दी कंध है ए जिहड़ा साडा शरीर है ए रेत दा घर है पहले बचपन फिर जवानी जवानी ने बचपन नूं खा जाना है ते बुढ़ेपे ने जवानी नूं खा जाना है ते काल ने बुढ़ेपे नूं खा जाना ए रेत दा घर है ए डिगदियां डिगदियां एक दिन मिट्टी दी ढेरी हो जाएगा उस घर विच बह के भी असी कितने खेल कर रहे हां आ संसार भी एक रेत दा घर है जिदे विच बह के असी तरह तरह दे खेल कर रहे हां वेखदे हां इना अखां दे वेखदियां वेखदियां अनेकां चले गए हन पर असी अपने आप नूं समझदे हां भई असी नहीं जाना हजूर कहिंदे हन बलुआ के ग्रह भीतर वसै रेत दे घर विच वस रिहा है अणद केल माया रंग रसै अनेकां केल करदा है माया दे नाल ओ भी रस मान लवां ਉਹ ਵੀ ਸਵਾਦ ਮਾਣ ਦਵਾਂ ਹਜ਼ੂਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਇਸ ਸਰੀਰ ਲਈ ਸਭ ਕੁਛ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜਿਹਦੇ ਆਸ਼ਰੇ ਤੇ ਸਰੀਰ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਉਸ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਵੀ ਧਿਆਨ ਧਰਿਆ ਕਰ ਉਸ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਵੀ ਸਿਮਰਨ ਕਰਿਆ ਕਰ ਜਿਹਦੇ ਆਸ਼ਰੇ ਤੇ ਸਰੀਰ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਉਹਨੂੰ ਤੂੰ ਭੁੱਖਿਆ ਹੀ ਮਾਰ ਛੱਡਿਆ ਅੱਜ ਤੱਕ ਜੋ ਕੁਝ ਤੂੰ ਕੀਤਾ ਆਪਣੇ ਸਰੀਰ ਲਈ ਕੀਤਾ ਆਤਮਾ ਲਈ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਆਤਮਾ ਨੂੰ ਕਦੇ ਕੀਰਤਨ ਦਾ ਭੋਜਨ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਸਿਮਰਨ ਦਾ ਪਦਾਰਥ ਨਹੀਂ ਛਕਾਇਆ ਗੁਰੂ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਦੇ ਵਸਤਰ ਨਹੀਂ ਪਹਿਨਾਏ ਸਤ ਸੰਗਤ ਦੀ ਸੁਗੰਧੀ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਲਾਈ ਉਸ ਆਤਮਾ ਨੂੰ ਤੂੰ ਸਰੀਰ ਲਈ ਤਾਂ ਤੂੰ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਕੀਤਾ ਇਸ

क्योंकि अमृत वेला है। तो अमृत वेले जाके पहला काम ये करना है कि कारी स्नान सेवन करो। स्नान भी हो गया, सिमरन भी कर लिया, इसका फल की मिले। तो अगली पंक्ति का जो फरमाउंडर

फिर लक्षण आशा जी दीवार न लगा के कीर्तन निष्माते उसपरंत अरदास गुरु के हुक्मनामे ए मर्यादा उदास ने बेनती की सी भी आई दी चाह सेवक वालों तो मैं की सेवा कर सकता हाँ तो जो तुसी प्यार दिता है और ये भी गुरु की प्रेरणा से तो उस संसार अज चाह का लंगर तैयार है और मैं तो एवं बेनती की कई प्रेमी कह लगे भाई जी साडा भी सब आखो श्री भाई कई प्रेमी ते नाल उन्होंने कहा भी साडा नाम ना लई ते असी भी जिना जिना ते गुरु ने मेहर की सेवका नाल हित किया है तो उन्होंने चाह का लंगर तैयार किया है तो हम प्यारी सास संगत सारे प्यार नाल क्योंकि अज आसा दीवार का कीर्तन भी पूरा हो गया तो मैं चाहूंगा अखीरला छंद अज आसा राग विच आसा राग तो आओ अखीरला ये छंद है अज आसा जी दीवार के कीर्तन का भोग पै रहा है सर्वासा पूर्णी आसा जी दीवार तो ये छंद आपा आसा

जिन्होंने बाणी नु कुछ समझिया है, कीर्तन कर रहे सन ना इस तो पहला ते पढ़ रहे सन, धन धन गुरु जिन नाम अरातिया, आप तरिया जिनी डिठा तिना ले छड़ाए, सवाल की ते बाणी की है अजे तक समझ नहीं आई, बड़ी बार कीर्तन सुने बड़ी बार कीर्तन कीता है पर अजे तक बाणी दा नहीं पता लगा कि बाणी की है। हुण किहदे कोल पुछिए बाणी की है, ते सात संगत कई कई गुरसिख कई बीबियां जदों गुरु ग्रंथ साहब महाराज दा पाठ करदियां ने ते जदों पाठ करन तो बाद जितने सफे हो जान कई लोग कागजां दियां निशानियां रख देंदे ने, ते जिसने कदे प्रतख गुरु की देह समझिया होवे साडी अख च कोई एक तीला चला जाए ते सानू सारी रात नींद नहीं आउंदी। एक वारी आखो प्यार नाल सतनाम श्री वाहे। सवाल कीता ए बाणी की है, जिसनों बाणी दा पता है उसने कलम चुकी ते लिखना शुरू कीता। सानू एक सनेहा दिता बाणी पढ़न वाले हो ए बाणी की है, साडी नजर ते सिर्फ इथों तक पहुंची है कि ए अखर ने ए सफे ने जिन्हां नूं असीं वरके कहने हां, जिन्हां नूं असीं पत्रे कहने हां, जिन्हां नूं असीं कई वार होर सुचज्जी बोली विच अंग कहने हां। ते सात संगत आ वेखो, तन है इस दी कलम ते तन है ए लिखण वाला, कहण लगा ए अखर नहीं ए वरके नहीं ते फिर की है। ते सात संगत अज तू ए प्रण कर लो, जो मैं कहण लगा अज तो बाद गुरु ग्रंथ साहिब नूं इसे तरह समझना है। जिसने कलम चुकी है ओ लिख रहा है, ओ कहंदा ए अखर नहीं ए वरके नहीं, ते जिदे सामने लिख रहा सी ओ कहन लगा फिर की है। ओ कहंदा जो मैं वेखे ओ मैं लिख रहा, जो मैं वेखे ए अखर नहीं ए वरके नहीं ए सीना ए गुरु नानक दा। कमाल है,

जो ऊपर पली है सुंदरता का मान जवानी का मान और अक्सर इस मान दे विच इंसान वो कम भी कर बैठता है जो नहीं करने चाहिए। पावत रली है जवानी दे मान विच जोवन दे मान विच नचदा टपदा इंसान किसी की परवाह नहीं करता। इहदा ए मतलब नहीं कि सोहना रूप नहीं होना चाहिदा या जवानी नहीं चाहिदी। साहिब जी कहते हैं जो सोहना रूप है ते मुबारक है ते जवानी

धरती का नहीं पर रूप भी हो गए, फिर जवानी भी तन दौलत ते फिर कोई विरला ही मनुख होता है जिहड़ा परमेश्वर का सिमरन करता है उसका शुक्र करता है। नहीं तो बहुत है लोग जवानी सोहना रूप तन दौलत विच पै के रब नूं ते भुलदे ही ने, वो अपने आनू भी भुल जाते। एक बारी रसना पवित्र करो प्यार नाल आपू सदना श्री कितों तक इंसान भुल सकता है, कितों तक रब नू ते लोग भुलते ही ने, अपने आनू भी भुल जाते ने। रब नू अपना इस वास्ते नहीं कहा क्योंकि आम लोग रब को बेगाने ही समझते हैं, आखो सतनाम से क्योंकि जे अपना समझन ते भुलन।

ओ परमात्मा हर जगह है। ते बच्चे भी कहते हैं ओ खुदा हर जगह है। मौलवी रोज पढ़ाता है ते बच्चे रोज पढ़ते, रोज सुनते हैं सुनते हैं, हुण ये गल याद हो गई, एक खुदा सब जगह है, हर जगह है। एक दिन मौलवी ने एवें बच्चियां नूं सवाल कर दिता, बच्चे हो कोई ऐसी जगह है जिथे खुदा नहीं? बच्चे सारे चुप, क्योंकि अज तक ते मौलवी साहब इहो ही पढ़ाते रहे ने कि खुदा हर पासे हर जगह। ते हुण किवें कहीए खुदा किस जगह नहीं?

आप ही पाया, पर जेता भुल गए। लभदे फिरदिया डोट है सी, पर पता नहीं कितने रखे। सौ का नोट जेब विच है, पर चेता भुल गया ते संबंध टुट गया। अचानक जेब विच हाथ मारे है ते जेब विच नोट निकल आया, संबंध जुड़ गया नोट नाल, क्योंकि नोट लभ गया। हुण घर विच किन्नियां चीजां लिया लिया के रखते हैं, ते जद कदी घर खोलते हैं ते कई चीजा घरों ऐसिया निकलदिया ने जिन्हां नूं असीं भुला चुके हो, ते फिर कहने अच्छा इत्थे

always सब कहने लगे अच्छा तू दस मैं ते एवी सवाल कीता सी बिना मतलब दा सवाल पर जे तेरे कोल जवाब है ते तू दस बच्चा उठ के कहन लगा मौलवी साहब वैसे ते खुदा हर जगह है हर पासे है अगर वो किधरे नहीं ते इंसान दे चेते विच नहीं आखो सतना आपसी वैसे ते खुदा हर जगह है अगर वो नहीं ते इंसान दे चेते विच नहीं इंसान ने रब को बुला दिता ते मौलवी उस बच्चे नु मत्था टेकया।

ता पिता ने के बेटा ओ ते ज्योति जोत समा गई, पर उन्हां दी जगह धन गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज आनंदपुर साहब जोता जगा रहे। ते पुत्र कहन लगा पिता जी मैं फिर आनंदपुर साहब जावा। ता पिता ने कहा बेटा धर्मशाला विच संग इकट्ठा हो रहा, आनंदपुर साहब जाने वास्ते तू भी उन्हां दे नाल चले आ जा, क्योंकि साथ होवे ते सफर सौखा कट जाता। तैयारी कीती, 100 रुपया पिता ने दिता, देखिया बेटा ये 100 रुपया धन गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज के चरणों से रख के मेरे वालों मत्था टेकी, 500 रुपया अपने वालों भेट करने वास्ते जेब विच पाया, धर्मशाला पहुंचे है, अरदास करके ये सारिया संगतां उज्जैन तो आनंदपुर साहब को तुर गई। हुण मन विच सोचता जांदा गुरु का दरबार कैसा होगा, क्योंकि उसकी बाणी विच बड़ा आनंद है, वो गुरु ते समाधि ला के बैठा होगा, मैं जाके बुलावांगा वो निंदा भी नहीं बोलना, क्योंकि साधुआं की संगत करता सी ते जो देखता सी उसे तरह गुरु साहिबां बारे

संगत गुरु दरबार बैठी जिस तरह आप बैठे। कीर्तन भी समाप्ति हुई, कुछ संगतां बैठिया रही हैं ते साहब जी धन गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज पूछते हैं, तुसी कीर्तन सुने तुहानू कैसा रस आया? हुण जिहड़े भी रोज कीर्तन सुनते सन कहन लगे महाराज सुभा दा रस है, क्योंकि साडा सुभा बन गया है रोज कीर्तन सुनना। कोई कहन लगा कन्ना दा रस है, क्योंकि कन्ना दे नाल कीर्तन सुने। कोई कहिंदा जुबान दा रस है, क्योंकि मूंह दे नाल कीर्तन कीता। ते साहिब जी सहजधारी नूं पुछदे ने, पर सिखा तू नहीं बोलदा, तेनू कैसा रस आया? और ये कहिंदा है, जे मैं आखा सुभा दा रस है, पहला मैं कदी कीर्तन सुने। जे मैं आखा जुबान दा रस है, मैं खादा कुछ नहीं। पर एक गल है, ज्यो ज्यो कीर्तन सुने मन भटक गया नहीं, मन दे विच ही टिक गया। आखो सतनाम श्री वाह। कहन लगा महाराज ये सिदक संतोख का रस है, आखो सतनाम श्री गुरु। पानी सुन के मन में संतोख और सिदक आ जाता। साहब जी कहने लगे सिखा निहार, एक महीना सेवा की और एक दिन 100 रुपया पिता वाला और 500 अपने वालों गुरु साहबा भेट करके मत्था टेकया। ते नाले कहन लगा महाराज कुछ बख्शिश करो ताकि मैं हुण घर नूं जावां। कड़ा प्रसाद दिता कि सिखा ये अपने पिता नूं नहीं साडे वालों एक सरबलोह दा कड़ा दिता, जिहड़ा कड़ा सी हाथ विच बन नाले वचन दिता कि सिखा इस कड़े का अदब रखी, जो मंगेगा गुरु नानक तैनू देवेगा। बड़ा खुश होया, खुशी खुशी आनंदपुर साहब तों तुरिया। पर जिस तरह ही आनंदपुर साहब तों बाहर आया ते सारा आनंद गुआच गया। आखो सतनाम श्री माया वाली फिरती फिर जाग गई। जिवें असीं कई वारी कीर्तन विच बैठे होने हैं ते बड़ा आनंद आता, जदों गुरुद्वारे बाहर निकलते हैं ते यह आनंद भुल जाता है, होर गल्लां याद आ जाती। इसे तरह आनंदपुर साहब तों निकले आ ते सारा आनंद गुआच गया। कहन लगा मना बहुत माड़ा कीता, 600 रुपया तो रोड़ के आ गया, एकड़ा प्रसाद दिता है गुरु ने जिहड़ा पिता घर रोज ही बनांदा एकड़ा दिता है। कहिंदे सन जो मंगेगा तैनू मिलेगा, इस कड़े की अपनी कीमत 4 आने नहीं, इन्हने मैनू 1000 रुपए कितों दे देने। आपको सतनाम सिर उदास हो गया ते गुरु की निंदा करता होया आनंदपुर साहब।

के नाले के है। सिख सिख का सत बणज सिख सिख का पाओ दगा सिख मम ना करे पानी अन्न पकाओ। सिख नु सिख नाल

होने को रहा खुश। पिता ने पूछिया सुना फिर बेटा, गुरु दे दर तू की लेके आए? जद के यार गुरु तू की लेके आए? ते मोरा दिया थैलियां अगे कर दी, ते जादे ने यह किया मैं

त्यागो। काम क्रोध संगत दुर्जन की तांते ऐनस पागो। सुख दुख दोनों सम कर जाने और माने पुमाना। हर क सोग ते रह अतीता तिन जग तत् पिछाना। उस्त निंदा दो ते आगे खोजे पद निर्वाना। जन नानक के खेल कठन है किन्हू गुरमुख जाना। जन नानक के खेल कठन है किन्हू गुरमुख जाना। साधो मन का मान त्यागो। काम क्रोध संगत दुर्जन की तांते ऐनस पागो। पहला मरन कबूल जीवन की छड़ आस। होए सबना की रैन का ता आओ हमारे पास। गुरु साहब ने बाणी उच्चारण कीती है। जिन्ना ने बाणी उच्चारण कीती है उन्हां ने आप लिखिया है के सो सखा संग सो सखा सख विंद है पाई। जो गुर के पाने विच आवे अपने पाने जो चले पाई। सो विचड़ छोटा कावे सो सिख सखा बंद पै पाई। जो गुर के पाने विच आवे जिन्ना ने बाणी उच्चारण कीती है। पहला धन गुरु अर्जन साहब ने आप काल पुरख का भाणा मन के दिखा के अपने शरीर ते कटा के वर्तमान विच लिया के पूरने पा के दिखा के ते गुरु साहब सफली करके दिखा के गए। सब तो पहला धन गुरु अर्जन साहब आप तत्तियां तवियां ते बह गए ते फिर उत्ते तत्ता रेता पवा के उबल दी देग विच बह के उबल के दिखा के ते बाणी नु अपने शरीर ते वातावरण विच लिया के कटा के पूरने पा के दिखा गे। ए जेड़ी शहीदी लैण ए धन गुरु अर्जन साहब तो चली है। जेड़ा कुछ भी नहीं कर सकया ना कोई कर सकदा है ते ना कोई कर सकया जिंदगी दे विच। जे किते धर्म दी रखिया वास्ते ओनू शहीदी प्राप्त हो जावे फेर भी ओनू पर होवे धर्म दी रखिया वास्ते। धर्म दी रखिया वास्ते जेदा शरीर भी लग जावे फेर भी एदा जन्म मरण कट्या जांदा है। इनू शहीदी मरातवा मिल जांदा है जे धर्म दी रखिया वास्ते शहीदी प्राप्त हो जावे। इस वास्ते गुरु साहब ने बाणी उच्चारण कीती है। पाले सौदा बड़ा महंगा नावे पाशा लिख के दे गया। जन नानक के खेल कठन है किन्हू गुरमुख जाना। ये बहुत ही खेल जेड़ी है बहुत औखी है। तत्तियां तवियां ते बह जाना फेर उत्ते तेतर तत्ता रेता पवाना। फेर गुरु साहब ने उबलदी देख दे विच उबल के दिखा दिता खेल ते हैगा बड़ा ही कठन है। ये कोई मखौल नहीं है। आर्यां दे नाल सीस चरवा देने ते मनी सो वानू बंद बंद कटवा देना।

खोजत खोजत भई बैरागन। प्रभ दर्शन को हों फिरो तसाई, दीन दयाल कृपाल प्रभ नानक, साध संग मेरी जलन। माई रजनी ने, माई रंगकड़ी ने किया फरीदा, किसे मुर्शद की सेवा कर आखो श्री वाहेगुरु, प्राप्ति मुर्शद तू हो गई। गुरु तारण कर, बाबा जी वचन कर दे सन, कितना जप तप क्यों ना कर लवे इंसान, जितने तक गुरु वाला नहीं बनता वो जप तप सफल ही नहीं होता। कितना कर तीजी पातशाह ने इक्की वेरी तीर्थ यात्रा की थी, गंगा मैया दी स्नान की थी, हर साल जाते सन, और भी कर्म कांड दान पर करते सन, पर बैरागी ने कह दिता सी ओ बाबा तो ता मेरा जन्म भ्रष्ट कर दिता है, क्योंकि तू निगुरा है आंखों श्री वाहेगुरु, मैं तेरे हथों पानी पी बैठा निगुरा गुरु दी। गुरु मिल गया भाई सबो कुछ, असी गुरु वाले तां बनते हैं जे अमृत छक लीए तो आखो श्री वाहेगुरु, फिर अस गुरु वाले बन जाते। गुरु का बड़ा माण है, जे गल च भाई पटा पाया।